0: तुम ये क्रेवेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी यूनियो और रेडियो पियों चुन क्रेवेर क्वारो
1: पियों चुन क्रेवेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचो
1: बीमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरो टेला
0: इटी यूनियो और रेडियो इटी यूनियो
1: इटी यूनियो
0: इबी इबी काय और रेडियो के केन

0: मार मैं पाचो
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: ईटी विनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: Life ain't no joke, man. No, y'all know what it is. Yeah, bitch boy on this one.

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी विनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी विनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम येकरे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो